0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का। कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

से बाबी, मेरे तरफ से हरिक को सादर नमस्कार और आदाब और सो। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03265 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

SBS की सर ये पेश की गई सुबह सुबह लो सीव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम। मंगलवार का दिन है, सभी को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है एक बार फिर से जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। चले अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक भजन होगा लता मंगेशकर की आवाज में, जरूर सुनते ही रहना। एक सुंदर सा राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में सुंदर सा राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश होगा एक सुंदर भजन अनूप जलोटा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में आपको हम ले चलते हैं बाबला जी की ओर और एक सुंदर भजन जो बाबला जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

वाला देखिए आवास में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रवित है। आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हरिओम शरण जी की ओर।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, चले यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा जी की ओर, और पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आज मंगलवार की सुबह की प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर श्री हनुमान चालीसा बस पेश किया जा रहा है उदित नारायण की आवाज में।

0: इसके जरिए अति सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई और रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ आज का भजन यात्रा का प्रोग्राम भी खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए भी, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।
1: लाली लसे अरुधर

श्री हनुमान जी की आरती पेश की गई हरि हरन की आवाज में, जो अभी आपने सुना। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। आश्रम मीठ है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। आप सभी सुनने वालों को रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है।

फतेह अली खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और साधना सरगम की ओर हम

खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल के साथ बेला सेंदे और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। पहली फिल्म का नाम है

और रेडियो SBS की जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आसराव बीट है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चलिए गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक खूबसूरत सा गाना होगा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में अरिजीत सिंह के आवाज में पेश किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामों काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में हर एक कामों काज किया जा रहा है। सभी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए टेलीफोन नंबर जो 24 आप सभी के लिए बड़ा एक बार होता है 030-265-65-60। आशा भोसले प्रोग्राम में

The Nightingale of Asia, आशब हुसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शहर उत्रेख हॉलैंडी से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मुकेश एंड शमशाद बेगम प्रोग्राम में मैं भौरा तू है फूल।

मुख्य ईसा और शमशाद बेगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए, मैं भौरा तू है फूल। खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए हैं। मोहम्मद रफी एन आशा भोसले, पुरानी नख में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये कैनबस प्रोग्राम भी पेश की गई। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, आशा भोसले की आवाज में। अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गए आशा भोसले के बाद चले प्रोग्राम में इस खास पुरानी नखमे की प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं लता जी की ओर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। मैंने बुलाया और तुम आए। लता के बाद अब की बार मुकेश और आशा जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। दमाई थी मुकेश और आशा जी की आवाज में ये गाना।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले हम आपको ले चलते हैं मुकेश के बाद लता जी की ओर, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई। लता मंगेशकर के बाद मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना फिल्म का नाम जब जब फूल खिले।

सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए बहुत से सुनने वालों है जो हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए बस भी सुनते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा सुनने वालों अपना मोबाइल फोन के जरिए मोबाइल टेलीफोन के जरिए इसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं radioSBS.nl।

परमेश्वरी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में खूबसूरत गाना अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की ओर हम आपको ले चलते हैं एक और काफी खूबसूरत सा गाना, ढूंढे तुझको नए दीवाने गाना का बोल है। और आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए चले एक बार फिर से लता मंगेशकर की ओर। लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वाले।

0: गाना बज प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म बॉबी का एक गाना पेश किया जा रहा है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: मुझे कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम बॉबी, बॉबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। गाना कबूल था मुझे कुछ कहना है और अब की बार मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। The Heart of Millions, The Mighty मुकेश की आवाज में।

मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में। चलिए मुकेश की आवाज में एक और खूबसूरत गाना, साथ में होगा लता मंगेशकर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म बरसात की ओर, और गाना

रेडियो इसके जरिए मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था बरसात, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले आज की प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। हम आपको ले चलते हैं फिल्म चोरी चोरी की ओर।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम मदर इंडिया की ओर। उसी फिल्म का ये गाना।

ट्रॉफी की आवाज में खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म नसीब की ओर। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में।

किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। फिल्म का नाम नसीब उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए। तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका दख हॉरोस्कोप होता है। जावेद अली प्रोग्राम में

सभी सुन वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

दिल जो ना कह सका फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS के जरिए। चले गाना अतीफ असलम की आवाज में पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अपनी बार कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे जो अब की बार पेश किया जा रहा है उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में।

श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

चाहे कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के है राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल होगा मिलना हमारा मुश्किल होगा, मिलना हमारा मुश्किल होगा मिलना हमारा।

गाना जो पेश की गए अजय और श्रेया जी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

यूएसबीएस के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। बाहर से सुहाना है, अंदर से इंजन पुराना है। गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एसबीएस के जरिए। अभी आपने सुना सोनू निगम एंड ऋषा शर्मा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। राहत जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, जावेद अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

एन श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम एन श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई दबंग फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म दहे की ओर। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एंड कवि

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हिमेश रेशमी और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है उमराव जान।

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत सिंह।

रेडियो SBS की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

अशब हुसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में ये गाना लता जी की आवाज में आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है पकीसा।

पुरानी फिल्म परस मनी का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना वो जब याद आए, रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। परवरिश फिल्म का नाम 1958 का फिल्म है।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं तलत जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है।

कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हम आपको ले चलेंगे अगली बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में। मनोज कुमार का फिल्म पहचान, उसी फिल्म का ये गाना। 1970 का फिल्म है, 1973 का फिल्म। मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना पेश की गए पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा के बाद चले प्रोग्राम में लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

डांस में फिखलता आसमान फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता जी की आवाज में फिल्म प्रेम बंधन का गीत पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदूर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस द फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदूर अलका याचिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इज अ फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन इट प्रोग्राम गीतों की लहर फिया रेडियो SBS।

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, क्वम द प्राचीन फिल्म धड़कन फन अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचनिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

चढ़ा दे रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन, सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

ना। दस बहाने करके ले गया दिल, द 2.0 वर्सी आउट द फिल्म बागी 3 इज गेसंग डोर शान, तुलसी कुमार, के विशाल दत्तलानी एंड शेखर अफजियानी। एंड दैट कम्स आउट द एल्बम तेरा चेहरा गेसंग डोर अदनान सामी खान, तेरा चेहरा जब नजर आए।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं

0: contacto con mi hija.
1: Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना।